सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीस होर कच्चू पिचू बोल दे से।

आए जदों आनंदपुर साहब दरबार विच नहीं गए, उथे आए जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा सोहना बाग सी, ते बाग दी सेवा कर रहा है भाई केसरा सिंह, आके चरणा विच बेनती कीती, भाई साहब कृपा करो सानू ऐसा मार्ग दसो कि साडे कोल एक सिख दी हत्या हो गई है, जो पानी मंगदा मंगदा चलिया गया, असी उदे मुंह विच घुट पानी दा ना पाया, ते हुण असी ए अपने सिर ते पिया होया गुनाह, साडा कीता होया पाप किवें बख्शिया जावे, ते सानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन होण। भाई केसरा सिंह ने आखिया तुसी इसे बाग दी सेवा करो, समा आएगा तुहानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन भी होणगे। भाई केसरा सिंह रोज अमृत वेले आ फुलां दी सोहना एक सेरा बना के लै जांदा सी, ओ सेरा माता जीतो जी जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दरबार विच आउंदे सन तां उन्हां दे गल विच पाया करदे सन, ओ सेरा अज सोइना बोइना ने अपने आंसुआं दे नाल परोया तैयार कीता, आख्या भाई केसरा सिंह लै जा साडी बेनती, ते पातशाह नूं कही साडे वास्ते की हुक्म है। जदों भाई केसरा सिंह सेरा लै के आया, ऐसे प्यार नाल गुद्या होया सेरा, जिस दे एक एक फुल ते सोइना मोइना ने पता नहीं कितने कितने अथरू डेगे हैं। जदों माता जीतो जी नूं लिया दिता, जो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दे सुपत्नी सन, लो माता जी, माता जी कहन लगे भाई केसरा सिंह अज बड़े प्यार नाल सेरा गुद्या, एडा सोहना सेरा, आख्या ये मैं नहीं गुद्या, ये कोई दो सोइना ते मोइना दनपति आए हन, ये उन्हां गुदे, ताही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आ गए। माता जीतो जी ने सेरा साहब जी दे गल विच जदों पाया, अंतर जामी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहन लगे भाई केसरा सिंह आ बेशक उन्हां नूं जाके कह दे सोइना मोइना नूं बाग दी सेवा जरूर करन, लेकिन जदों असी बाग विच आईए तां साडे मत्थे ना लगन। साध संगत बोलो श्री क्योंकि साडे सिख ने वचन कीता है कि तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। वापस आया भाई केसरा सिंह, मन बड़ा उदास है, सोइना मोइना समझ गए कि अजे हुक्म नहीं मिले, रोज नाम जपदे हन सेवा करदे हन। एक दिन रात दा समय दोनों अपनी झुग्गी विच बैठे शब्द गा रहे हन, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ, ताईये बुआ खड़किया, बुआ खोलिया की वेख्या माता जीतो जी खड़ोते, आख्या मेरे बच्चियो फिक्र ना करो, जिस प्यार नाल तुसी गुरु घर दी सेवा कर रहे हो नाम जप रहे हो एक दिन ओ जरूर आवेगा, मेरा मन कहिंदा जदों तुहानू कलगीधर पातशाह दे दर्शन होणगे। साध संगत बोलो श्री वाहेगुरु। ओ सतवीं दा दिन नेड़े नेड़े आ रहा, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा अवतार पुरब, सोइना मोइना ने सोहने फुल तैयार कीते के जाके साहब जी दे चरणा विच भेटा करके गुलदस्ता बना के सोना भेजांगे। एक दिन विच रह गई, अगले दिन पो सतवीं दा दिन सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे आगमन दा, प्रकाश उत्सव दा, ताईये रात एक रोड़ा जलाली करके फकीर आया, उसने सारी क्यारियां विचों फुल तोड़ के ले जाण लगा, सोइना मोइना ने जदों ए वेख्या ते चरण पकड़ ले, आख्या ए फुल तेरे वास्ते ने, ए फुल असी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वास्ते सजा के रखे। तां ओ कहण लगा जे मैनू फुल ना दियोगे तां मैं तुहानू श्राप दे के जावांगा। कंब गए, गश खा के दोनों डिग पए, सर्दियां दी रुत है, दोनों दी लोथां बाग विच पईयां। जदों सवेरे रोड़ा जलाली फकीर फुलां लै के गुलदस्ता बना के धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे चरणा विच पहुंचिया, अज पौ सतवीं दा दिन है, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा जन्म दिन,
सारे पेटावां लियारे जदों रोड़ा जलाली ने पुल रखे अगे तां धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तड़बक के उठ पए। आख्या ओ रोड़ा जलाली, तू रोड़ा जलाली नहीं तू रोड़ा पलाली है। तू ए फुल नहीं तोड़ के लियाया बाग विचों, गुरु नानक दे चरणा विचों दो रूहां नूं तोड़ के लियाया। साहब जी उठे आए उस थां ते जिथे सोयना ते मोयना बेसुरत होके पैन दोनों दी लोथां पईयां। साहब जी दे नाल सारियां संगतां बाग विच आ गईयां। साहब जी उत्थे ही धरती ते बह गए, इक गोडे ते सोना सोयनिया दा सिर रखिया, इक गोडे ते मोयना दा। भाई दया सिंह जी पातशाह जल लियाओ, जल दे छट्टे दिते। दोनों ने नेत्र खोले, की वेखिया, साडा सिर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी गोद विच है। सात संगत बोलो श्री। आख्या सुपना है के सच? साहब जी कहन लगे सच है। अज तुहाडे प्यार दे सदके मेरे सिख ने भी तुहानू बख्शिया और मैं भी तुहानू बख्शिया। आओ अज असी अपना ए पोह सतवीं दा पुरब तुहाडी झुग्गी विच ही मनावांगे। झुग्गी विच लै गए, साहब जी बह गए, सारियां संगतां उत्थे ही आ गईयां। साहब जी ने आख्या ओ एडे प्यार नाल सानू याद करदे सो, शब्द सुनांदे सो, हुण असी आए हां, हुण भी तां सुनाओ। दोनों ने फिर ओ शब्द गाव्या। अज मन दियां लोचावां पूरन हो गईयां क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे प्रतख दर्शन हो रहे। सात सगत बोलो श्री। आ एडा प्यार किते साडे मन विच भी आ जावे, साडा भी मन और रसना इक हो के ए अखर आखे, तां फिर गुरु दूर नहीं है। बुलिया साईं ते तो वख ना, फर्क भी विचों कख ना, पर वेखण वाली अख ना। आओ करिए बेनती, मन हिरदा और रसना इक होके ए पुकारे की। आओ

संस्कृत ग्रंथां विच जय श्री जयंत श्री आदि नामा नाल संबोधित श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित जैत श्री ही है। बड़े मनोरंजक अते कठिन राग नूं शुद्धता सहित महान गायक ही गा सकते हैं। जैत श्री दा प्रभाव सुख अते खुशी देने वाला है। खुशी लैण लई मन दे आलसिया उगलाना वाला सुभा छड हीरे विच रतन नाम नूं वसा के गुरु बख्शिश लैनी पैंदी है। इस राग नूं मनोरंजक बनाउण लई इस दे स्वरूप विच ईशव धैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगाए जांदे हन। आरोह विच ऋषव अते धैवत वर्जित हन। इस दा वादी सुर गंधार अते संवादी निषाद है। इह राग दिन दे चौथे पहर गाया जांदा है। राग जैत श्री विच दो शब्दां दा कीर्तन सरवण करो। पहला शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। इस नूं गा रहे हन बीबी नवेदिता कौर जी। शब्द दी तुक है कोई जन हर सियो देवै जोर। अते दूजा शब्द गुरु रामदास जी दी रचना हर हर सिमरो आगम अपारा भाई महेंद्र सिंह जी सागर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला शब्द कोई जन हर सिंह देवै जोर।

0: जित्ता जित के कायम सिख राज कीता, चंडा केसरी लाहौर चुला दिता। जी दी बात ने बै अफगान पौदे, नौ जग दे विच चमका।
1: गुजरा वाले दी धरती 1791 दा पागा परिया दिन
2: सरदार गुरदयाल सिंह दे घर माता धर्म कौर दी कुखों जन्मिया सरदार हरी सिंह नलुआ।
1: 7 साल दी उम्र विच ही पिता दा साया सिरों उठ गया। नानकियां दी निगरानी विच हरी सिंह ने शस्त्र विद्या ते कोल सवारी विच निपुणता हासिल कीती। कुछ सालां विच ही चंगा योद्धा बन गया।
2: शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने एक दिन हरी सिंह नलुए दी वीरता दे करतब देखे ता अपनी फौज विच भर्ती कर लिया।
1: दिना विच ही तरक्की कर हरी सिंह शेर दिल रेजिमेंट दा सरदार बन गया। शेरे पंजाब दे जरनैल, खालसा राज दे थम जरनैल हरी सिंह नलुए दिया गल्ला कर इंज होन लगिया।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया,

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल, पहाड़ियां गूंज उठिया। दस कु हजार सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चो मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई, सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एउं टकरे

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महासिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

राज मिलक जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

हुकम सी परमेश्वर दा परसा संगत हुकम मनना कोई सौखा नहीं। ए भी सच है एक दिन मरना है, पर ए भी ता सच है कि विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। इस दुख दा उन्हूं पता है जिदा कोई मरे, क्योंकि गुरु साहिबा ने इस दर्द नूं समझिया। अगर किसी औरत दा पति मर जाए, मां दा पुत मर जाए, उस दुख नूं गुरबाणी विच साहिब जी बयान करदे ने, ओ मां जिहदा पुत्र जिन्हों ने बड़े चा नाल पालिया। कहिंदे ने हर मां बाप की इच्छा हुंदी साडा पुत्र वड्डा होवे, जदों असीं मरीए ये सानू मोढ़ा देवे। पर ऐसे मां बाप नूं जदों ये पता लगे कि साडा पुत्र मर गया ते उन्हां दा दुख की हो सकदा है, कबीर साहब जी बयान करदे ने। देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, वेड़े विच बैठी मां रोंदी पई है, जिस पुत्र नूं पालिया जानदा तां मेरा समां सी, उस पुत्र नूं मरिया देखिया, जिन्हों चार भरा आए चुक के लै तुरे। एक पासे मां रो रही है, दूसरे पासे लट छिटकाए तिरिया रोवे। तिरिया औरत नूं के है, एक पासे वाल खिलार के औरत पई रोंदी है, जिदे सिर दा साईं चला गया ओदे दुख नूं कौन समझ सकदा है। साहिब जी धन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने, औरत भी पति नाल ही सौंदी है, जद तक पति जिउंदा है आदर सारे दिंदे ने, पति ना रवे ते दुनिया विच जीवन जीवना बड़ा औखा हो जांदा है।

बंके कहंदे ने पती नूं, जिन्हां दे पती मर गए, जिन्हां वापस नहीं आना। उन्हां औरतां दे बारे साहिब जी कहंदे ने, तिन क्यों रहण विहाणी, उन्हां दीआं रातां हुण किवें बीतण, क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे, रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण, पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहिब जी बाणी विच बयान करदे ने, ओ पत्नी किवें जीवन बितावे जिहदा पति इक वारी गया ते मुड़ के वापस नहीं आया।

समय नाल ओ आके ले जांदी क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने औरत दे दर्द नु समझया अपने आप नु फिर कहन लगे ऐ परमेश्वर ऐ अकाल पुरख तू मेरा पति है जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं तू मेरा पति है तेरे बगैर मेरा जीवन

के वे अकबरा कह के कौन बुलाएगी। क्यों जद मां कहती सी वे अकबरा ता मेरा मन खुशी नाल झूम उठदा सी। जो मां दी झिड़क विच भी आनंद है ओ दुनिया दी सलामा विच नहीं।

इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसे दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। ते इंसान लड़ाइयां जितदा है, तरक्कियां करदा है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है। ए भी कहंदा है हों मारो हों बंदों छोड़ो, मुख ते एव बबाड़े। मुख कहंदे ने मोह नूं, मोह तूं ए भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है

करके अखां विच अथरू ने गुरु रामदास जी दे सुपत्नी माता पानी हाथ जोड़ के कहन लगी, मैनू भी नाल ले चलो, तुहाडे पिछे रह के हुण मैं की करना। गुरु रामदास जी कहन लगे, भाई जीवन ते मौत परमेश्वर दे हाथ है, जीवन ओ देंदा है, जीवन लेंदा भी ओ है। इस शरीर नू गवाण दा किसे नू कोई हुक्म नहीं, ओदा हक नहीं बनदा। समा साडा आया है, असा ज्योति ज्योत समाना है, पर तुसा हाले बड़े काम करने। फिर प्यार भरी एक निगाह अपने सुपुत्र गुरु अर्जन साहब वाल देखिया, एक निगाह सारी संगत वाल देखिया, फिर अखा बंद कर लिया। देखण वालिया नू इस तरह जापदा, हुणे अखां खुलण गईआं, हुणे कुछ कहणगे, हुणे बुल हिलणगे, कोई अमृत बचन सुनाणगे। पर समा ओ आ गया, ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। धन गुरु रामदास ज्योति ज्योत समा गए ने, और उपदेश कर गए किसे ने रोना नहीं, क्योंकि रोण दा लाभ कोई नहीं। मत मैं पिछे कोई रोव सी, सो मैं मूल ना पाया। रोना नहीं, परमेश्वर दा कीर्तन करना है, सिमरन करना है, ताकि सिमरन सदका विछड़ी रूह नू परमेश्वर अल्लाह दे चरणा विच जगह मिले। ए उपदेश कर गए ने, भाई अगर कोई विछड़ जाए दुनिया ना त्यागना, विराग विच पै के अपना शरीर ना गवा लेना, दुनिया विच रहना, दुनिया नू नाशवान समझना, दुनिया दे काम भी सारे करने ने, पर नाशवान समझ के किसे दा बुरा नहीं करना, किस ना ठगी नहीं करनी, जीवन उच्चा ते सुच्चा बताना है। गुरु साहब जी कहंदे ने, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत शब्द ना पछाने। नांगा आया नांगो जासी, ज्यों हस्ती खाक शाने, संत सज्जन सुनो सब मीता, झूठा ए पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साज नाम निस्तारा, एक नाम ने निस्तारा करना है। अज दा कीर्तन आप सुन के अपने मना विच धारिए, एक दिन मरना है, ताकि जीवन सफला करके जाइए।

पावन पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, ओदा जिक्र कर रहे हैं। कहंदे ने कि बंदगी करदा हां ओदी महान कृपा नाल, सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी जात का होके लोग इन मथे टेकते ने। हैं ए क्यों? बंदे दा सुभा है, बंदा किसे दी वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करदा, किसे दी प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करदा। कबीर जी नूं ए सजा दिती गई कि इनू पैरां नूं बेड़ियां, हथां नूं हथकड़ियां पाके गंगा विच सुट दिता जावे। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझदे ने, ते बंदगी वाले पुरुष नूं गंगा विच सुटन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया ओदा जिक्र कीता है। पर कहंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने ओदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। आओ प्यार नाल सर्वन

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांके हृदय बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

अठारह किवन किन ही निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया किन्हीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती किन्हीं कया मैं कुले वडाई किन्हीं कया बाह बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्हीं भवन सब

ठाऊं नहीं तुझे है आ बदो पुरख बिधाते आंखों सुहे जिठे सबे थाओ नहीं तुझे बदो पुरख बिधाते आंखों सुहे वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर वसदी सकनों अपार अनूप रामदासपुर हरिहा नानक कसम।

अकाल मूर्त अजूनी सहभंग और प्रसाद जब आप सच युगात सच है भी सच नानक खोशी भी सच चक्र के नर्वर्ण जात हर पात नहिंजे रूप रंग रगी पीप कुकर सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित पूज के हिंजय पूज इंद्र इंद्राण शाहु शाहान गणिजय फिर भवन में ही सुरनारा सुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतपुर आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी अवर्ण सूजय दूजी ठार आर प्रयु तो द्वारी लेखा छोड़िया लेखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब नाम आधारी नानक दास संत पाछा परयु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ना श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ना दुख न जानिया

0: अपने पद करें प्रद बाला अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई
1: भाई जी का खालसा।

अपने दास दियां सारियां मनोकामना पूरियां कीतियां हन। गुर पूरा नमस्कारे, प्रभु सबे काज सवारे। सेवक नूं परमेश्वर ने किसे किस्म दी थुड़ नहीं रहन दित्ती।

प्रभ पूरन पैज सवारे। जेड़ा मनुख पूरे गुरु दी शरण पैंदा है, ओट लैंदा है, आसरा लैंदा है, साईं फरमांदे ने यकीन जानो कि परमात्मा ने उस दे सारे काम सवार दिते। प्रभु ने उस मनुख उते मेहर दी निगाह कीती ते लोक परलोक विच उस दी लाज चंगी तरह रख ली। शब्द विच साहिबां दा फरमान।

तू मेरा वड्डा मालिक है, तेरा नाम पदारक जो मैनू गुरु दी राही मिलिया है, ये तेरी ही बख्शिश है। जन नानक एक ते आया, सर्ब फला पुन पाया। जिस मनुख ने गुरु दी शरण पै के परमात्मा दा सिमरना शुरू कर दिता, उसने सारे फल देन वाली

के निर्जुन नरूप हो के निर्जुन पूर्वी न पार पाव हिंगला हिमाल जाव गोर घर देच कुल गाव तेरा नाम है पूर्वी न पार पाव हिंगला हिमाल जाव गोर घर देच कुल गाव तेरा नाम है दुख दुख सद पौन सद लगते।

बादशाह कहन वाले कह छड़ देने। भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा दे बड़ा खंडन कर दिते, उन्होंने दिल विच कोई भेद सी, फर्क सी। बादशाह कहन लगे, नहीं मेरा किसी नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गल्लां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल, उन्हां तों विछोड़ के जे मैं आखां मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विच्छां। मैं कहिंदा भई नहीं, ओ वी दस रहे ने, मैं वी दस रहा, उस वाहगुरु दे तुसीं वी सेवक बनो, इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहंदे ने